मुसलमाना सिर सरियत पढ़ पढ़ करे बिचार, बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार, हिंदू सलाही सलाहण दर्शन रूपे अपार, तीर्थ नावे अर्चा पूजा करवास पैकार, योगी सुन त्यावण जेते लख नाम करतार, सुख मूर्त नाम रंजन काया काया का, सतिया मन संत।

0: कूड़ कूड़ा ने हो लगा विसरिया करता किस लड़की चे दो सब जग चलन हा कूड़ मिठा कूड़ माखो कूड़ डोबे पूर नानक बखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला
1: सच ता पर जानी है जार दे सच्चा हो कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा तो सच ता पर जानी जा सच तेरे प्यार ना सुन मैं वैसी है ता पाए मुख दो सच ता पर जानी है।

सिमलर अक्सर है रात दीर्घत मुच विजया व्यास कर जय निरासिकित फल फिके फल बक बके कमना वे पत मिठत नीवी नानक गुण चंगियां तत सब को निवे आपको पर को निवे ना कोई।

0: ज्ञानी उतारे तुहि महला पहला।
1: मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना पर तेरे है पर तन रूप कन्नी।

करम धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जा गाती लुटै निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जेत छूटे संतो सागर पार उतरिए जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिये रहाओ कोट तीर्थ मज्जन इशनाना इस कल में मैल भरीजै

दस रहे हैं परसों कीर्तन दियाँ इतनिया सेवावान प्रवान करनिया जी। कीर्तन करद तू बेअंत भुल हो गई हो साध संगत और गुरु गरीब नाथ पातशाह धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बख्शनहार हैं, बख्श लेना जी। सुन बहुत ही सत्कार योग भाई साहब भाई गुरशन सिंह जी चीमा आप जी ने गुरमत विचार गुरु की शब्द की विचार सरवण करवा गए। आओ उन्होंने पासों गुरमत की विचार सरवण करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

उल्टी गंगा जमन मिलावो, बिन जल संगम मन में नावो। लोचा समसर ए ब्योहारा, तत विचार क्या अवर बिचारा। आप तेज बाए पृथ्वी आकाशा,

चंगेज खां दे बनाए होए कानून अनुसार काजी ने फतवा लाया। जहांगीर कहिंदा काजी साहब शरा की कहिंदी है, बटे दे दे के सिर ते कुल्ला रख के तो हरे रंग की पग बद्धी हुई है, तो गल विच माला आ, हाथ विच तस्बी है, शरा की किताब कच्छ विच। बुढ़ा काजी कहन लगा जी जासा बा सियासा दे कानून अनुसार गुरु अर्जन देव दे शरीर विचों कतरा भी खून दा ना निकले बस इहनूं खत्म कर दिता जावे। हुण खत्म किवें करना, जां खूह च डोब के मारना तां खून नहीं निकलदा, जहर दे देना तां खून नहीं निकलदा, फाहा दे देना तां खून नहीं निकलदा, बाकी बढ़न टुकण नाल तां खून निकल। हूँ इन्हों चो सजा हूँ चाहनी है। गुरु अर्जन देव महाराज कह लगे कहते जहांगीर बादशाह तू मौत नू सजा कहना। हसे गुरु अर्जन देव मुस्कुराए कहते जिहड़ी एक अटल सच्चाई आ कहते तू मरना नहीं, मैनू तू कल मार दूंगा, तू दसा साल तू आ जाऊ तैं मरना, और जिन्ने बैठे ने सारिया ने मर जाना, किसी ने रहना ही नहीं। ये अटल सच्चाई आ, मरन लिखाए मंडल में आए, मौत तो पहला अटल सच्चाई है, तो तुसी मैनू मौत का फतवा दिने। कहिंदे कोई परवाह नहीं, मैं मरन वास्ते तैयार हूं। सन्नाटा छा गया, भानी का पुत गुरु अमरदास महाराज जी का दोतरा, क्योंकि बीबी भानी गुरु अमरदास महाराज की धी आ जिहदी कुखों अर्जन देव पैदा होए। पहली वारी हुण बाबर, बाबर का पुत हमाजू, हमाजू का पुत वा अकबर, ते अकबर का पुत वा जहांगीर जिहड़ा फतवा ला रहा। सतगुर कृपा करे शामा दी दीवाना च गुरु अर्जन देव महाराज की शहादत, इहदा सारे इतिहास का रिजल्ट कढ़ांगे। सतगुर कृपा करे तुसी कदम कदम चल के आए हैं, तकरीबन असी बहुतांत अंदर खाण विच रुझ गए। साढ़े मन में एक भुलेखा आ जिहड़ा गुरद्वारे विच आपां जो कुछ खाने आ वह गुरु दा आ, जिहड़ा घर खाने वह साडा आ। सियाणे बैठे हो, जो कुछ आपां घर खाने वह भी सतगुर दा बख्शिया होया। गुरु अर्जन देव महाराज की शहादत जदों हुंदी ना, असीं बहुत पंजाब च रौला पाउंदे वी मिठी चीज़ ना बनाओ, इहनूं बरागमई रहण दिओ, इहनूं मर्ग रहण दिओ, मिठियां चीज़ां ना जद मर्जी बना के खा लो, कोई दुख नूं दुख समझो। गुरु अर्जन देव महाराज की शहादत कोई माड़ी मोटी गल नहीं सी, इहदा शामा दे टाइम ते आपां चंगी तरह निचोड़ कढ़ांगे। सतगुरु कृपा करे तुहाडियां अरदासां गुरु की गुल च पाया, किरत कमाई बिचों तिल फुल दर प्रवान सतगुरु करन, तुहानू सारियां नू चढ़दियां कलां तंदुरुस्तियां खुशियां खिड़े सतगुरु बख्शिश करे। सारी संगत बड़े एक सुर होकर झकाओ शीस बुलाओ फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हुण वक्त है सहज पाठ लाइव चलते ने, वह ज्ञानी दलवाग सिंह जी लुधियाने वाले लाइव सहज पाठ पढ़ के सुना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की।

मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता, करण कारण समराथ स्वामी, पूर्ण पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो, गुरु नानक भय दयाला, जय जयकार पय जग भीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला। सूरठ मोहल्ला पंजवा। हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछाण, हाथ दे राखे करे अपने, सदा सदा रंग माण। साचा साहिब सद मेहरवान, बंद पाया मेरे सतगुरु पूरे, हुई सर्व कल्याण रहाओ। जियो पाए पिंड जन साजिया, दिता पैनन खान, अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद कुरबान। सूरठ महला पंजवा। दुरत गवाया हर प्रभ आपे, सब संसार उबारिया,

हर गोविंद नमा निरवा रहाऊ। ताप गया प्रभ आप मिटाया, जन की लाज रखाई। साध संगत ते सब फल पाए, सतगुरु कै बल जाई। हलत पलत प्रभ दुवै सवारी, हमरा गुण अवगुण ना विचारिया। अटल बचन नानक गुरु तीरा, सफल कर मस्तक धारिया। सूरठ महला पंजवा, जी जंतर सब तिसके किए सुई संत सहाई। अपने सेव किया पे राखै, पूर्ण पई बड़ाई। पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुर पूरे पूरी सब राखी। होई सर्व दयाल रहाउ, अन दिन नानक नाम ते आए। जी प्राण का दाता, अपने दास को कंठ लाए राखै। ज्यों बारक पित माता। सूरठ महला पंजवा, घर तीजा चौबदे। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया। सिकदार हो न पते आया, उमराव आगे चेरा। मिल राजन राम ने मेरा, अब ढूंढन कत हो ना जाई। गोविंद भेटे गुरु गोसाई रहाओ। आया प्रभ दरबारा, ता सगली मिट्टी पुकारा।

प्रभ अब चलनीव उसारी, बल धन तकिया तेरा तू भारो ठाकुर मेरा, जिन जिन साध संग पाया सो प्रभ आप तराया, कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया, होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई, सास सास प्रभ त्याईए हर मंगल नानंगाईए, सूरठ महला पंजवा सूख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा, पूरे गुर कृपा धारी तांगत भई हमारी, हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बीना रहाओ, हर चरण की ओट स्थानी सब चूकी कान लुकानी, जग जीवन दाता पाया हर रसक रस गुण गाया, प्रभ काटिया जम का फासा मन पूर्ण हुई आसा, जय पिखा तै सोई हर प्रभ बिन अवर न कोई, कर कृपा प्रभ राखी सब जन्म जन्म दुख लाथे, निरपो नाम ते आया अटल सुख नानक पाया, सूरठ महला पंजवा ठांड पाई करतारे ताव छोड़ गया पर बारे, गुरपुरे है राखे शरण सच्चे की ताकी, परमेश्वर आप हुआ रखवाला शांत सह सुखिन में उपजे, मन हुआ सदा सुखाला रहाओ, हर हर नाम दी उदारू तिन सगला रोग बेदारू, अपनी कृपा धारी तिन सगली बात सवारी, प्रभ अपना बिरद समारिया हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया, गुर का शब्द पयो साखी तिन सगली लाज राखी, बुलाया बोली तेरा तू साहिब गुणी गहेरा, जप नानक नाम सच साखी अपने दास की पैज राखी, सूरठ महला पंजवा विच करता पुरख खलुआ, बाल न विंगा हुआ मंजन गुर आंदा रासे, जप हर हर किल बखनासे संतो रामदास सरोवर नीका, जो नावै सो कुल तरावै उधार हुआ है जी का रहाओ, जय जयकार जग गावे मन चिंदी अड़े फल पावे, सही सलामत ना आए अपना प्रभु दे आए, संत सरोवर नावे सूजन परम गत पावे, मरे न आवे जाई हर हर नाम ते आई, एहो ब्रह्म विचार सो जाने जिस दयाल होए भगवान, बाबा नानक प्रभ सरनाई सब चिंता गणत मिटाई, सूरठ महला पंजवा पार ब्रह्म निभाई पूरी, काई बात न रही आ उरी, गुर चरण लाए निस्तारी हर हर नाम समारे, अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे, मात पिता ज्यों पाला रहाओ, बड़भागी सतगुरु पाया जिन जम का पंथ मिटाया, हर भगत पाए चित लागा जप जीवे से बड़भागा, हर अमृत बाणी गावे साधा की धूरी नावे, अपना नाम आपे दिया प्रभ करण हार रख लिया, हर दर्शन प्राण आधारा एहो पूर्ण बिमल विचारा, कर कृपा अंतर जामी दास नानक शरण स्वामी, सूरठ महला पंजवा गुरपुरे चरनी लाया हर संग सहाई पाया, जय जाइए तहां सुहेले कर कृपा प्रभ मेले, हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले फल पावो, जी कै संग सहाई रहाओ, नारायण प्राण अदारा हम संत जना रे नारा,
ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਲੀਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦੀਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਸਤ ਜੀ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਏ, ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵੇ ਦਾਤਾ, ਹਰ ਰਸ ਤਿਨ ਹੀ ਜਾਤਾ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰਪੁਰੈ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੂਰੀ, ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਭਇਆ ਇਸਨਾਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਧਾਰੇ, ਬਿਗਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਤਿਲਕਾ ਕੋਈ, ਕਾਰ

अट कट शब्द सुवाखे, गुर के चरण ऊपर वल जाई, दिन सरैन सा सा समाली, पूर्ण सबनी थाई रहाउ, आप सहाई हुआ, सच्चे दा सच्चा ढोआ, तेरी भगत वड्याई, भाई नानक प्रभ सरनाई, सोरठ महला पंजवा, सतगुरु पूरे भाणा, तां जपिया नाम रमाणा, गोविंद कृपा धारी, रव राखी पैज हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा सोई फल पावे, बिरथी आस न जाई रहाउ, कृपा करे जिस प्राण पद दाता, सोई संत गुण गावे, प्रेम भगतता कामन लीना,

संत साध भय साथी, कारगै लीने सर्वस दीने, आपै आप मिलाया, को नानक सर्व थोक, पूरन पूरा सतगुर पाया। सूरठ महला पंजवा, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेन शारी, इस आगे को न टिके विकारी, गुरपुरे इही गल सारी। हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिसकी गत होवै, उदरै सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, एहो पूरन हर तन पाया, को नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया। सूरठ महला पंजवा, गुरपुरे पूरी किनी, बख्श अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाव सगले सुखी बसाया। हर की भगत फल दाती, गुरपुरै कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाऊं।

पंजवा, करन करावन हर अंतर जामी, जन अपने की राखै, जय जयकार होत जग भीतर, शब्द गुरु रस चाखै। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई, तू समरथ सरन का दाता, आठ पैर तुम ध्याई रहाओ, जो जन भजन करे प्रभ तेरा, तिसे अंदेसा नाई। सतगुर चरण लगे पो मिटिया, हर गुण गाए मन माई, सुख सहज आनंद कनेरे, सतगुरु दिया दिलासा, जिन कर आए सुबा सेती, पूर्ण होई आसा। पूरा गुर पूरी मत जाकी, पूर्ण प्रभ के कामा, गुर चरनी लाग तरयो भव सागर, जप नानक हर हर नामा। सूरठ महला पंजवा, भयो किरपाल दीन दुख पंजन, आपे सबिद थाटी, खिन मैं राख लियो जन अपना, गुर पूरे बेड़ी काटी। मेरे मन गुर गोविंद सब ध्याई, सगल कलेस मिटै इस तन ते, मन चिंदिया फल पाई रहाओ जी।

प्रभ जीओ खसमा ना कर प्यारे, बुरे भले हम थारे रहाओ। सुनी पुकार समरथ स्वामी, बंधन काट सवारी, पहर सिर पाओ सेवक जन मेले, नानक प्रगट पहारी। सूरठ महला पंजवा, जी जंत सब बस कर दीने, सेवक सब दरबारे, अंगीकार कियो प्रभ अपने, भव निध पार उतारे। संतन के कार्य सगल सवारे, दीन दयाल कृपाल कृपा निध, पूर्ण खसम हमारे रहाओ। आओ

विद्या को कैसी, धर्म फोन कुन फुन करई, कौन नाम गुर जा कै सिमरै, भव सागर को तरही।

आवै। सुख दुख रहत सदा नरलेपी, जाको कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर, नानक दर्पण न्याई। सूरठ महला नौवा। माई में कह बिदलखो गुसाई, महा मोह अज्ञान तिमर मोह, मन रहयो उरझाई रहाओ। सगल जन्म भरम ही भरम खोयो, नह अस्थिर मत पाई, विख्यास कत रहयो निसबासुर, नह छुटी अदमाई। साध संग कब हूं नहीं कीना, नह कीर्त प्रभ गाई, जन नानक मैं नाहे को गुण, राख लियो सरनाई। सूरठ महला नौवा। माई मन मेरु बस नाहे, निस बासुर बिखियन को तावत, के विद रोको ताहे रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सुन,

मन तन तेरी टेक है प्यारे, मन तन तेरी टेक, तुद बिन अवर ना करन हार प्यारे, अंतर जामी एक रहाओ। कोड़ जन्म प्रम आया प्यारे, अनेक जोन दुख पाए, साचा साय विसरिया प्यारे, बोती मिले सजाए। जिन पेटै पूरा सतगुरु प्यारे, से लागे साचे नाए, तिना पिछे छुटिए प्यारे, जो साची शरणाए। मीठा करके खाया प्यारे, तिन तन कीता रोग, कौड़ा होए पतिष्ठया प्यारे, तिस्ते उपजिया सोग। भोग पुंचाए पुलायन प्यारे, उतरै नहीं विजोग, जो गुरमेल उधारिया प्यारे, तिन तुरे पया संजोग। माया लालच अटिया प्यारे, चित ना आवै मूल, जिन तू विसरे पा ब्रह्म स्वामी, से तन होए तूड़। बिललाट करे बहुतेरिया प्यारे, उतरे नाहीं सूल, जो गुरमेल सवारिया प्यारे, तिना का रहिया मूल। साकत संग ना कीजिए प्यारे, जे का पार वसाए, जिस मिलिए हर विसरे प्यारे, सो मोहे काले उठ जाए। मन मुख टोई नह मिले प्यारे, दरगह मिले सजाए, जो गुरमेल सवारिया प्यारे, तिना पूरी पाए। संजम सहज सियाण पया प्यारे, इक ना चली नाल, जे बेमुख गोबिंद ते प्यारे, तिन कुल लागे गाल। होदी वस्त ना जातिया प्यारे, कूड़ ना चली नाल, सतगुर जिना मिलायुन प्यारे, साचा नाम समाल। सत संतोख ज्ञान त्यान प्यारे, जिसनों नदर करे, अंदिन कीर्तन गुण रवे प्यारे, अमृत पूर परे। दुख सागर तिन लंघिया प्यारे, पव जल पार परे, जिस पावे तिस मैं लेह प्यारे, सेई सदा खरे। समर्थ पुरख दयाल देव प्यारे, भगता तिस का तान, तिस शरणाई टह पए प्यारे, जे अंतर जामी जान। हलत पलत सवारिया प्यारे, मस्तक सच निशान, सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारे, नानक सद कुरबान। सोरठ महला पंजवा, कर दूजा अष्टपदियां, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। पाठ पढ़यो अरबेद बिचार्यो, निवल पयंगम सादे, पंच जना स्यों संग ना छुटक्यो, अधिक अहं बुद्ध बादे। प्यारे इन बिद मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी कै द्वारे, दीजै बुद्ध बिबेका रहाओ। मौन पयो कृपाती रहियो, नगन फिरियो बन माही, तट तीरथ सब धरती परम्यो, दुबदा छुटके नाही। मन कामना तीर्थ जाए, बस्यो सिर करवत तराए, मन की मैल ना उतरै, एह बिद जे लख जतन कराए। कनेक कामनी है वर गैवर, भो बिद दान दातारा, अन बस्तर पूं बहु अर्पे, नह मिलिए हर द्वारा। पूजा अर्चा बंधन दंडोत, खट कर्मारत रहता, हो करत बंधन मह परया, नह मिलिए इहो जुगता। जोग सिद्ध आसन 84 AP, कर कर रहया वड्डी आरजा, फिर जन मैं हर स्यों संग ना गहया। राज लीला राजन की रचना, करया हुक्म अफारा, से सोहनी चंदन चुआ, नर कोर का द्वारा। हर कीर्त सासंग है, सिर करमन कै कर्मा, कहो ना तिस पयो प्राप्त, जिस पुरब लिखे कालहना। तेरो सेवक एहो रंग माता, पयो कृपाल दीन दुख पंजन, हर हर कीर्तन एहो मन राता, रहाओ दूजा। राग सोरठ वार

0: राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की कर दूजा एक ओंकार सत गुर प्रसाद। जब देखा तब गावा तो जन तीर जे पावा नाद समाय लो रे सतगुर पेट ले देवा रहाओ। जय चिल मिल कर दिसंता तै अनहद शब्द बजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी। रतन कमल कोठड़ी चमकार भी जल तही नेरे नाही दूर निज आत्मे रहया भरपूर। जे अनहद सूर उजियारा तै दीपक जलै छंछारा गुरु प्रसादी जानिया जन नामा सहज समान्या कर चौथा सोरठ। पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा का पहे छान छवाई हो तो पहे दुगनी मजूरी देहो मोको बेडी देहो बताई हो। री बाई बेडी देन ना जाई देख बेडी रहे उसमाई हमारे बेडी प्राण अदारा रहाओ। बेडी प्रीत मजूरी मांगे जो को छान छवावे हो लो कुटुंब सबो ते तोरे को आपन बेडी आवे हो। ऐसो बेडी बरना साको सब अंतर सब ठाई हो गुंगे महा अमृत रस चाख्या पूछे कहना जाई हो। बेटी के गुण सुनरी बाई जलन बाद त्रु था प्यो हो नामे के स्वामी सी बोली लंक पपी खन आ प्यो हो। सोरठ
1: बिन सावन कन हर गाजे बादल बिन बरखा हुई जो तत बिचारे कोई मौको मिलियो राम स्नेही। जय मिले दे सुदेही रहाओ मिल पार सखन जन होया मगर मनसार तन परोया। निज पाओ पया परम पागा गुर पूछे मन पदिया गा जल पीतर कुंभ समानिया सब राम ही कर जानिया। गुरजे लह मन मानिया जन नामे तत पछानिया राग सोठ बाणी भगत रविदास जी की कुंकार सतगुर प्रसाद। जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही अनलगम जैसे लहर में उदत जल केवल जल माही। माद में क्या किया परम ऐसा जैसा मानिया हुए ना तैसा रहा नरपति युग सिंहासन सोया सपने प्या भिखारी। अक्षरत अक्षत राज बिचरत दुख पाया सोगत पई हमारी राज भयंग प्रसंग जिसे हैं अब कछ मरम जनाया। अनक कटक जैसे फूल परे तब केते कहना आया सर्वे गानी के स्वामी सब कट भुग वै सोई। कह रविदास आत्मे निर से जे होए सो हुई। जो हम बांधे मोह पास हम प्रेम बंधन तुम बांधे अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम आराधे। माधवे जानत हो जैसी देसी अब कहा करोगे इसी रहा मीन पकड़ फांके और काटे हो रात की हो भोबानी। खांड खांड कर भोजन गिनो तू ना बिसरियो पानी अपन बापे नाई किसी को पावन को हर राजा। मोह पटल सब जगत व्याप्यो भगत नहीं संताप कह रविदास भगत एक बाड़ी अब यह खास्यो कही है। जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजू सही है। दुलभ जन फुन पल पायो बेता जादा विकै राजे इंद्र संसर ग्रह आसन बिन हर भगत को कह लिखै। नाम विचार्यो राजा राम को रस जय रस अनरस विसर जाई रहा।

द्वारा ऐसा नाम रतन निर्मूलक पन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राखिया, रतना चपे चपाया। हार गुण के दे गए न जाही, जैसे गुंगे की मृयाही। रहा रसना रमत सनत सुख श्रवणा, चेचे ते सुख होई कह पिखन दो नयन संतोखे। जे देखा ते सोई तना श्री महला पहला कर पहला, जोप दे कुंकार सतनाम करता पुरख। निरभव निरवैर अकार मूर्त, अजुनी सह भंगुर प्रसाद।

तुमनालो पंचो रोकरे सकल पनराय पुलं ज्योति कैसी आरती हुए पवखन्ना तेरी आरती अनहता जोध भाजन पेरी रहा सहस्ताव नैन नान नैन है तोय को सहस मुहूर्त नायक तोई

मनयाई। समय प्रविख सोई गुरमती घट प्रगट हुई, सहजे जिन प्रजान पछाणिया। नानक नाम रै मन मनिया, त्रासी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल आता पारा। गुर कै शब्द परे भंडारा, नाम तन बिन होर सबिक जान। माया मोह जरै अभिमान, गौर मुख हरद जाखे कुए, दिसदा आनंद हुवै दिन राती। पूरे भाग प्राप्त हुए राग, शब्द दिवक वरते ते लोही। जो जाके सो निर्मल हुए, निर्मल नाम हमें मरत हुए। साची पैसदा सुख हुए, जिन हरद चाख्या सो हर जन लोग। दिसदा हर कनाई कदे सोग, आ मुक्त वरा मुक्त करावै।

गर्म सलाई ससोई आपे साजे करता सोई तिस बिन दूजा वर ना कोई। जिस लाए जिस सच लाए सुई लागै नानक नाम सदा सुख आगै। राग तनासरी महला तीजा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

की राह। हर की लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जपाओ अपना, हम मांगी भगते का की राह। हर के सेवक से हर प्यारे, जिन जप्यो हर बचना की लिखा, चित्र गुप्त जो लिखिया सो छूटे जम की बाकी। हर के संत जप्यो मन हर हर लग संगत साध जना की, दिनी अर सुर दुष्णा गुण जाने, शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरख वडगम गोचर, तुम आपे आप पाकी, जन नानक को प्रभु कृपा की जय। कर दासन दास दसा की तनासी मला चौथा, कर पंजवा धूप दे कूंकार सतगुर प्रसाद।

प्रगट कर दीने। राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट, हार संग हरि सत्संग पे हर कंचन चंदन कीने। रहाउ नाव से खट बोलै मुख आगर, मेरा हर पर इव ना पतीने। जन नानक कर हे दे सत्यावो, इव हर पर मेरा पीने। तनासी महला जूता, गुण गो हर लोक कर सेवा सतगुर, इव हर हर नाम ते आई। हर दुर्गे पावे फिर जमुना, वह हर हर हर जोत समाई। जप मन नाम हरि होए सर्व सुखी, हर जसों जसवना ते ऊपर, हर हर हर सेव चढ़ाई रहाओ। हर कृपा निदकीनी, गुर भगत हर दीनी, तब हर स्यों प्रीत बन आई। बो चिंत विसारी हर नाम अवतारी, नानक कर पै सखाई। तनासी महला चौथा।

इतना सिंह महला चौथा सेवक सिख पूजन सुया में सब गावे हर रोत बानी गाव्या सुनया तिनकार थाई पावे जिन सतगुर की आग्या सत सतकर मानी बोलो भाई हर की थर फौजल तीर्थ हर दर्दन की उत्तम बात है संत अर्कता जन जनो जानी रहा आपे गुरचे लाए आपे आपे हर पर चोज वेदाणी जा नानका मिलाए सोई अर मिलसी अवर सो त्याग वार पानी तनासी माला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर जाके वसै काम तेना सोए सार त्याई है मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हालत पालत मुख उजल हुई है नित आई हर पुरख निरंजना रहा जय हर सिमरन पया ते उपाद गत कीनी उड़ भागी हर जपना।

जलधर में रविया त्रिवटाही अगम रूप गिरधारे किरत करै सगल जन तेरी तू अविनाशी प्रभु मुरारी। जो पावै त्यो राखो स्वामी जन नानक शरण दुआरी। तनासी महला पंजवा बिन जल प्राण तुझे है मीना जिन जल सिंह हित प्रटायो कमल हित बिन सिंह है पवरा उन मार्ग निकस ना पायो। आप मन एक सो मोह कीना अवर ना अब ना अब मन एक सो मोह कीना मरे ना जावे सदी संगे सतगुरु चौधरी जी ना राव।

पुरख बिदाता पाए। आप मोहे राम जिस मन गायो, प्यो बरगास दास मन में सदगुर पूरा पायो रहाओ।

रंग लागा। चिंता चिंता सोचा सोचा सो गलो मोथाका, हो मैं रोग मिटा कृपा ते जमते पे बेबाका। गुरु की डैल गुरु की सेवा गुरु की आज्ञा पाणी, को नानक जिन जमते काटे तिस गुरु की कुर्बानी। त्रासी मोहला पंजवा, जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सो जानी तिन्ही सुनया दुख सुख मेरा, तू बिंदने की घटानी। जी की ये कही बेमानी, अवर जतन करे बतेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी रहा, अमृत ना निर्मोलक हीरा, गुर दीनो मंतानी, डिगे ना डोले दृढ़ करे, पूर्ण होए त्रिवतानी।

कतू तबे है को येसु हमरा मीत सगल समर्गी जियो हियो देवर पो अपनो चीत रहाओ। पर तन पर की निंदा तिन सो प्रीतना लागे संत संग संत सभा कन हर कीर्तन मन जागे।

रहाउ। जानकासाई हुआ निंदक पागे हार, परमद परमद वाही मोए बाहुड करे नाम जार। नानक सन प्रयोदक भंजन गुण गावे दा पार, निंदक काम काला हुआ दीन दुनिया के दरबार। तनाश्री महला पंजवा, अब हर राखण हार चितारिया, पतत पुनीत किए खिन पीतर सगला रोग बिदारिया। रहाओ गोष्ट पही साध के संगम, काम करो लो मारिया, सिमर सिमर पूरण नारायण संगी सगले तारिया।

रहाउ। चंदन चुवार सुभोगत करत अनेकै, भिख्या विकार देख सकल है फीकै। एकै गोविंद नाम को नीको कहत है साध जन, तन तन आपन थापियो, हर जप निमख न जापियो।

पहला दुख दारू सुख रोग पिया जा सुख तामना होई तू करता करना मैं नाही जाऊं करी ना होई बलिहारी कुदरत वसिया।